क्या कमाना, अलमल खाय श्री शाही पाई, मूर्ख अंदा पत गवाई, विणना में किस थाए ना पाई, रहे बेबाणी मणि मसानी, आंदना छावे पर पछताणी। सतगुर भेटे सोस पाए, हर खाना मन वसाए, नानक

0: बेनती तुद बाज कुड़ो कुड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानिए जरदे सचा होए कुड़ की मल उतरे तन करे हशा तोए। सच ता पर जानिए जा सच तेरे प्यार नौ सुन मन रैसिए ता पाए मुख द्वार।

चार अंधी रयत ज्ञान भी होनी पाए प्रेमरदार ज्ञानी नचै बाजै वावे रूप करे श्रृंगार पूछै को कह वादा गावे जो दागा विचार मूर्ख पंडित हिकमत हों जित संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवावे है मंगे मुख द्वार।

0: तू सचा शिव सिरत स्वर जन के ते सो पार पया। ओ नानक करते किया बाता जो किच करना सो करया महला दू।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, कत्री शब्दं सूर शब्दं सुद शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानकता का दास है, सोई निरंजन देव महला।

ऊपर आए बैठे पड़ियार मत पिटै वे मत पिटै एहो अन्न साडा फिटै तन फिटै फिड़ करेन मन जूठै चुली परेन कहो नानक सच त्याई कहो नानक कहो नानक सच त्याई सच होवे ता सच पाई पड़ी चित अंदर सब को।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी तू सुल्तान कहां हौं मिया, तेरी कमन वडाई जो तू देहे सो कहां स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाई तो दिया गए अरदास हमारी।

जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक सतगुरु जहरा जहूर अति हाजरा हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माण रहे गुरबाणी कीर्तन दे राही परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ के अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफल बना रहे गुरु सवारे सत्संगी जनों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है गो गुरु के दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। जिथे गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की जो कथा विचार आप जी हर रोज सरवण करते हो उस नाल संबंधित गुरु के ए पावन पवित्र अमोल बचन वडहंस राग दी वार विचों आप जी सरवण कर रहे से। सतगुरु जी ने अज दे मुख वाक दे राही सानू सतगुरु जी दी सेवा नाल जोड़े है कि गुरु दी सेवा करनी चाहीदी है। पर गुरु कौन है, क्योंकि अज कल तक घर घर ही गुरु बने बैठे ने। गुरमत ने शरीर नू गुरु नहीं कहा। जदों असी गुरु की बाणी पढ़ते साहब कहिंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु नानक साहब जी का शरीर गुरु नहीं सी, उन्हां विच जिहड़ी जोत सी जो ज्ञान सी ओ साडा गुरु सी। ते सतगुरु जी ने सानू शब्द गुरु दे नाल जोड़िया। साहब कहिंदे सतगुरु की वडियाई ए है कि सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसके संग सिख उधर है नानक हर गुण गाओ। जो सतपुरख विच अभेद है परमात्मा च ओ गुरु है। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कही है। मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लई है। जिदे दीदार करदे आनंद बन जाए, जिदे कोल बैठ के मन की दुविधा मिट जाए, जिदे कोल आके मनुख परम पद नूं प्राप्त हो जाए ओ गुरु है। गुरु कोई ले नहीं कि मैं मत्था टेकिया कोई मेरी दुनियावी गल पूरी हो गई तो गुरु बन गया। जदों गुरु की महिमा सतगुरु जी ने की साहब कहिंदे बेस विषय गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुरु को बल जाओ। सर्ब निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एके आप नहीं कस परम। सह स्याण पलया न जाइए नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है। गुरु ओ है जेड़ा हमेशा नाम विच अपेद है। गुरु जेड़ा सर्व निधान दा दाता है। गुरु केवल दुनियावी पदार्थ ही नहीं दिंदा। ठीक है गुरु कोल आके दुनियावी पदार्थां दीयां साडियां लोड़ां भी पूरियां हुंदियां ने सतगुरु जी दी बख्शदे हैं। पर गुरु जेड़ा साडे जी दा दाता है, जी दा दाता। असी सुखमनी साहब जी एक थां ते होर वचन करदे हां कि सतगुर सिख की प्रत करे प्रतपाल सेव को गुर सदा दयाल। सतगुर सिख की दुरमत मा लहरै गुरबचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख को नाम धन दे। अगे जाके सतगुर सिख का हलत पलत सवारे। सतगुर जेड़ा सिख दा हलत पलत सवार दिंदा। सतगुर सिख दी जी करके प्रतपालना करदा, जी दे जीवन करके उन्हें जीउंदियां कर दिंदा। इस करके गुरु साहब जी कहिंदे भाई अजहे गुरु दे नाल जुड़ोगे तुसी परमात्मा च अपेद हो जाओगे, लिवलीन हो जाओगे। पर जदो गुरु नूं छड़ के होर किसे बने जाओगे। भाई गुरदास साहब जी ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा है, तुहाडा जी करदा है अंब खाण नूं। कोई बंदा कहे कि अंब ते अजे है नहीं, आ कच्चियां अंबियां खा के गुजारा कर लै। कच्चियां अंबियां खाण दे नाल अंबां वाला स्वाद नहीं आएगा। बच्चा माता पिता ना नाराज हो गया, कई बार घर च हो जाती गलबात। घरों निकल गया रात को, गुआंढियों की नजर पै गई, कहिंदे ओ किधर चलिया। कहिंदे मैं घर नहीं रहना, घर छड़ दिता, मेरे नाल लड़दे रहिंदे घर वाले, मैं नहीं रहना घर। ते गुआंढी कहिंदे साडे घर आ जा, तू ये साडे बच्चियां वर्गा ही है। बच्चियां वर्गा तो कहणगे पर बच्चियां वाला अधिकार नहीं देणगे। बच्चियां वर्गा कह देणगे, जो बच्चियां नूं प्यार करदे ने जो अधिकार दिंदे ने ओ नहीं देणगे। तुहाडा जी करदा है कि समुद्र विचलियां जिहड़ियां बरकतां पदार्थ ओ मिल जाण। कोई कहे समुद्र ते बड़ी दूर है, पिंड दे छप्पड़ चों ही लभ लै।
छप्पड़ चो समुद्र वाली दातां नहीं मिलनिया, उथों चिक्कड़ मिल सकदा, बीमारी मिल सकती है, गंदगी मिल सकती है। तुहाडा जी करदा कि जिवें हुण दिन जिहड़े इदां दा चानण होए, हनेरा है, कि कोई कोई दीवा बाल ले, दीवा बाल के कम तो सर सकदा थोड़ा बहुता, पर सूरज की बराबरता नहीं हो सकती। मीह नहीं पिया, खूह के पानी नाल असीं बुत्ता सार लैंदे हां थोड़ा बहुता, पर खूह का पानी मीह की बराबरता नहीं कर सकता, वर्खा की बराबरता नहीं कर सकता। बिल्कुल इसे तरीके नाल चंदन के बूटे की जो महक है, जो चंदन के बूटे की वडियाई है, वह कोई ढाक पलाह का बूटा बराबरता नहीं कर सकता। तो भाई साहब जी कहते जो गुरु की वडियाई है ना, और जेडे अजकल नहीं दुकाना खोली बैठे थां जिन्होंने कहते साडे गुरु जी ने, साडे गुरु जी ने, गुरु जी ने नाम दिता है, यह सतगुरु की बराबरता नहीं कर सकते। भाई साहब के बचन के आम की शदर कत मिटत आमरी खाए, पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है। अंब खाने की रीज कच्चियां अंबियां खा के पूरी नहीं होनी, प्यो वाला प्यार जड़ा है वह पड़ोसियों पासों गुआढ़ियों पासों नहीं मिलना। सागर की निद कत पाईए, पुकर से दिन कर सम दीप जोत न दिपाई है। सागर कहिंदे समुंदर नूं, समुंदर वर्गे खजाने छप्पड़ चो नहीं मिलने। दिनकर कहिंदे सूरज नूं, सूरज दे बराबर जिहड़ी है वह दीवा चान नहीं दे सकदा, सूरज की बराबरता नहीं कर सकता। इंद्र बरखा समान पुजसन कूप जल, इंद्र कहिंदे बदल नूं, बदलां दी वर्खा की बराबरता खूह का पानी नहीं कर सकता। खूह का पानी माड़ा नहीं है, लेकिन बदलों ने जो फसलों नूं आनंद देना है, उच्चे नीवे सारे थावां ते उन्हां दे उपरों मिट्टी घट्टा झाड़ देना, खूह का पानी तो नहीं कम कर सकता। चंदन समान पलास ना महकाई है, चंदन की बराबरता ढाक पलाह का बूटा नहीं कर सकता, ओह जी महक नहीं दे सकता। भाई साहब जी ने चार पांच उदाहरण दे के दुनिया के लोगों, श्री गुरदयाल की दया न आन देव मैं खंड ब्रह्मंड उदे असलोताइए। गुरु वर्गा प्यार, गुरु वर्गी दया, गुरु वर्गियां दातां किसे और देवी देवते विच नहीं है। इत्थे गुरु है जिहड़ा मनुखता की खातर अपने पुत्र भी कुरबान कर सकदा है, ते देवते जिहड़े सराप देता जी फलाने का परिवार बर्बाद हो गया, फलाने का घर वस गया, इत्थे तक ही ने। इस करके गुरु वर्गा प्यार कित्यों नहीं मिलता। खंड ब्रह्मंड उदे असलोताइए, खंडा ब्रह्मंडा विच जिथों सूरज निकलदा जिथे जाके लुक जांदा, तुसी फिर के देख लो गुरु वर्गा प्यार कितों नहीं मिलना। गुरु सिख दी हालत पलत करके रखिया करदा, गुरु सिख दी जी दे नाल प्रतिपालना करदा, गुरु सेवक दे हमेशा अंग संग रहिंदा। इस करके सतगुरु जी कहिंदे भाई गुरु की सेवा विच आओ, जे सुख लेना है तो गुरु की सेवा चो मिलेगा। गुरु दे कोल आया तो सुख ही सुख है। तुसी जुरे तुरे जा रहे हो कि मीह पै गया, अचनचेत वर्खा आ गई, कि तुसी सिर लकाउण लई उत्थे दुकान च वड़ गए, दुकान है तंबाकू की, तुसी तंबाकू खरीदया नहीं, तुसी तंबाकू वरतदे नहीं, पर जिन्ना चिर उत्थे रुके उत्थे धुआं ते तुहानू मिल गया ना, मुफ्तदाई उत्थे तुहाडे उपर असर पै गया। पर हुण तुसी तुरे जा रहे हो, इसे तरीके नाल तुहानू किते आसरा लेना पै गया, तुसी वड़ गए अतर फलेल दी दुकान ते, ओ तुसी उत्थों कोई सुगंधी वाली चीज खरीदी नहीं, पर सुगंधी मुफ्त विच मिल गई ना तुहानू। बिल्कुल इस तरीके नाल असीं गुरु कोल आउने आ, भावें साडे हिरदे च बाणी नहीं वसी जां ओ प्यार नहीं है, पर गुरु कोल आके सानूं किन्नियां दातां मिल जांदियां ने, इत्थे किन्ना सानूं प्यार मिल जांदा है। इह गुरु दा दर है, जिथे खत्री ब्राह्मण सूदर वैस उपदेश चो वर्णा को सांझा, इथे ब्राह्मण आ जाए उन्हें भी उही प्यार, ते ब्राह्मण नु जिन्हें सूदर किया वह आ जाए उन्हें भी उही प्यार, वह भी उहदे बराबर ही बैठेगा, उन्हें भी उसे तरीके नाल प्रसाद पानी मिलेगा, उन्हें उसे तरीके नाल कड़ा प्रसाद का गफा मिलेगा। उहदे लई कोई वखरी लाइन नहीं लाई जाएगी कि तेरे परेशामे तुसी भिटे जाना। यह गुरु का दर ही है। अज दे लोकां नूं गुरु दे दर दी महानता दा पता नहीं। जो माण सतगुरु जी ने दिता है ना मनुखता नूं, कुछ लोगों नूं पचदा नहीं है, कुछ लोगों नूं ओह पचदा नहीं है। गुरु ने सानू उस जात पात चो कढ के, ऊंच नीच दे भेदभाव चो कढ के, जो नफरत हुंदी सी नीवें वर्ग नूं उहदे तों उच्चियां उठा के सानू राजे बनाया। ते अज जदों असीं समाज च देखदे ना कुछ लोगों दा रुझान, वो लोगों के मुड़ के उसे खड डिगना चाहते ने जात पात के बंधना में। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बराबरता कोई नहीं कर सकता। तुसी गुरु को आओ, तुहानू बराबर गुरबाणी का उपदेश मिलता है, बराबर गुरु के कोल आके हर दात मिलती है, बराबर बहन का अधिकार मिलता है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਦਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ, ਬੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨ ਹਾਟ ਕੇ ਹਟੂਆ ਲੇਤ ਹੈ, ਘਟਾਏ ਮੁੱਲ ਦੇਤ ਹੈ, ਚੜਾਏ ਡਹਿਕ ਤੇ ਜੋ ਆਵੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ, ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ, ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘੱਟ, ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਔਗੁਣ ਲੇਤ ਗੁਣ ਦੇਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਉੜ ਧਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਗੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ।

0: ये पावन बचन वडहंस राग दी वार दी तीसरी पौड़ी दे नल अंकत ने ये वार गुरु रामदास जी महाराज दी उच्चारण कीती हुई है। इस तीजी पौड़ी नल दो श्लोक साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज दे अंकत कीते हुए ने। पावन पौड़ी जो गुरु रामदास जी महाराज दी है उथे सतगुरु जी दी वडियाई दसी कि गुरु है कौन है ते किस गुरु दी सेवा करनी चाहिदी है। ते पावन श्लोकां च गरीबनवास सतगुरु जी कहिंदे कि गुरु दी सेवा किन्नी महान है, गुरु दी सेवा च सानू मिलदा की है। गुरबाणी विच इक थां ते बचन है कि सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। गुरु दी कीती हुई सेवा कदी बिरथी नहीं जांदी। तुसी गुरु दे दर ते आए हो ना, तुहाडा एक एक कदम जिहड़ा वह सफल है, वह बिरथा नहीं जांदा। गुरु कोल तुसी बैठे हो, बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी एक घड़ी आधी हूं ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। तुसी थोड़े तो थोड़ा समा भी गुरु कोल प्यार नाल बैठ जो, अदब नाल बैठ जो, तुहानू बड़ा भारी लाभ मिलेगा। संगत गुरु की बख्शिश किवें मनुख की जिंदगी नूं बदल दिंदी है। जिन्हों असी सज्जन ठग कहने वह कई वरे गुरु कोल नहीं सी बैठा, उन्हें को कई खंड पाठ नहीं से सुने, वह तो एक थोड़ा चिर बैठा एक गुरु का शब्द सुने उसकी जिंदगी बदल गई। वह गुरु कोल बैठा है, जे गुरु कोल आईए ना गुरु कोल ही रहीए, ये नहीं कि बैठे गुरु कोल है तो मन साडा दुनिया के पैसे गिनी जांदा है, दुनिया के काम कार गिनी जांदा है, दुनिया दी होर ही गल्लां गिनी जांदा है, मन करके गुरु कोल बैठ जाइए। साहब जी कहिंदे जदों गुरु की सेवा विच लग गए ना गुरु की सेवा सफल हो जाती है। जो चाहवांगे मिल जाएगा, मन इच्छे फल पाए, जो चाहवांगे मिल जाएगा। पर गुरु की सेवा नाल ते जुड़ जाइए। गुरु की सेवा का अर्ज जिथे असी देखो लंगरां च सेवा करते हैं, दरबार सेवा करते हैं, कोई झाड़ू की सेवा करता है, कोई पोचा मार रहा है, कोई होर कई तरीकों ने जोड़े घर सेवा कर रहा है, यह भी सेवा है। पर यह सेवा तो उत्तम सेवा ज सेवा तां सफल है जे अगली सेवा करी। वह सेवा कहड़ी है कि सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर उत्तम बाणी, गावे आ सुने आ तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। गुरु के बचन मनने गुरु की सेवा है, गुरु के भाणे विच चलना गुरु की सेवा है। हुण मैं उवें सेवा करी जावां शरीरक तौर ते गुरु की गल ही ना मन्ना। देखो ना अपना बजुर्ग हुंदा है, को बापू को दादा घर दे विच, असी उहदा कहना ही ना मनीए, वह सानू रोके काका कम नहीं करना, इधर नहीं जाना, मनीए ना कि उदा बापू दे गोडे घुट गए आपां। बापू कहेगा गोडे घुटन का की फायदा, कहना तो मनदा ही नहीं है। तो गुरु साहब जी कहणगे मत्था ते बड़ा टेकदा, गल ते मेरी मनदा ही नहीं, सलाम जवाब दोनों करे मुढ़ों कुथा जाए। गुरु नूं सलाम ही करदे आ पर गुरु की गल मनदे भी नहीं आ। इस करके सतगुरु जी कहिंदे गुरु की सेवा, जिहड़ा गुरु की रजा च आ गया, गुरु के प्यार च आ गया, सुखी हूं सुख चार। सेवा दे नाल एक कलमज लिखे है चाकरी। चाकर कौन हुंदा है? जिहड़ा असी नौकर नहीं रख लैंदे उहनू साडा कहना मनना पैंदा है। इसे करके असी गुरु की सेवा च आ जाइए, गुरु के चाकर बन जाइए, तो यह तो गुरु की सेवा सुखां विचों सर्वश्रेष्ठ सुख दिंदी है। गुरु की सेवा चो महान सुख मिलता है, उत्तम सुख मिलता है।
1: इत्थे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार।
0: गुरु की सेवा च जे जुड़ गए ऐस दुनिया च भी वडियाई मिलेगी। देखो जेड़ा गुरु की सेवा करदा ना उदी सारे थां ते उस्तत हुंदी है, वडियाई हुंदी, उहनू हर कोई प्यार करदा है। गुरु की सेवा करे, पखंड ना करे, अडंबर ना करे, इन्हें के अंदरों कुछ होर होवे ते बाहरों कुछ होर होवे, बाहरों सेवा दा अडंबर करे पर अंदर उहदे स्वार्थ होए जां अंदर उहदे को होर ही भावना है, उहदी गल नहीं है इत्थे। जिहड़ा मन तन अर्पण करके देखो ना, सेवा कीती सी भाई लहणा जी ने, साडे को उदाहरण है, सेवा कीती सी बाबा बुढ़ा साहिब जी ने, भाई लहणा जी ने सेवा कीती मन तन अर्पण करके, ते उह तां गुरु ने अपना रूप ही दे दिता उहनां नूं, गुरु ने अपने वर्गे बना दिता। यह गल कोई भाई लहणा जी ते नहीं रुक गई। जदों भी जिहड़ा कोई अपना मन तन गुरु अगे अर्पण करेगा, गुरु अमरदास जी ने कहा हस्ती सिरज्यों अंक सह, ਐਹਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਹ ਕੇ ਉੱਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਐਨ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦਰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

सतगुरु जी की संगत सच्ची संगत है। वह बंदा हमेशा सच्ची संगत नाल गुरु की संगत नाल जुड़िया रहिंदा। सच्ची संगत जिते सच की गल है जिन्हों असी सत संगत कहने। सत संगत को मनुखां दे इकट्ठ नूं नहीं किया जांदा। इकट्ठ तां देखो असी कुछ लोग बैठे हाँ ते भीड़ां ते बाहर भी बड़ियां कट्ठियां हुंदियां ने, उहनूं को सत संगत थोड़ो कहने। सत संगत दा अर्थ है कि जिथे एको नाम बखाणी है, जिथे एक परमात्मा दे नाम की चर्चा है, एहो जिहा बंदा जिहड़ा गुरु की सेवा करदा है उह सच्ची संगत नाल जुड़दा है, उत्थों उहनूं सच की प्राप्ति हुंदी है ते उहदा फिर वाहिगुरु जी दे सदा कायम रहण वाले नाम दे नाल प्यार।

सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे ने भाई गुरु दी सेवा पता कौन कर दे जिदे ते वाहिगुरु जी दी बख्शिश हुंदी है। सेवा को एवे नहीं कर लेना। गुरु अर्जन साहब जी का एक थां ते बचन के सहस सियाणप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर वडभागी पाई है।

0: परमात्मा मेहर कर देना मेहर उदो सानू पूरे गुरु को ले आउंदे ते पूरा गुरु की करदा सानू ज्ञान दिंदे गुरु को केवल ज्ञान है तुहानू किसे चीज की कमी परमात्मा ने नहीं रखी किसे मनुख नू माड़ा नहीं बनाया गरीब नहीं बनाया किसे मनुख नू घट नहीं बनाया हर मनुख धरती दा राजा है राजा पर सानू ज्ञान ही नहीं है साडी ते हालत पता की है जिवें बाबा रविदास जी महाराज कहिंदे ने कि नरपत एक सिंघासन सोया सुपने पिया भिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी जिवें राजा नरपत कहिंदे राजे नू राजा राज सिंघासन दा मालिक है सुते नू किते सुपना आया सुपने च भिखारी बन गया दुखी हो रहा मंग रहा कहिंदे हैगे असीं वी राजे पर सौ गए असीं गुरु सानू केवल जगाउंदा ही है कि अपने अंदर झात मार तेनू कोई कमी नहीं है गुरु सानू साडी वैल्यू दसदा है गुरु सानू साडी पॉसिबिलिटी साडी समर्था दसदा है कि तुसी किन्ने महान हो गुरु सानू ए नहीं कहने कि तुसी बड़े पापी हो तुसी बड़े अपराधी हो तुहाडा कुछ नहीं बनना इन्निया मस्या नहाओ इन्निया पुन्निया नहाओ इन्ने नंगे पैरी आओ तंग ये गुरु नहीं कहिंदा ये तो असीं अपनियां देखा देखी गल्लां बनाईआं ने गुरु ते सानू कहिंदा कि बंदिया मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाणो तू रब दी अंश है अपने मूल नू जान अपने आप नू पछाण जाग सुचेत हो गुरु सानू साडा ज्ञान दिंदा है ज्ञान होर पदार्थ बाजारों भी मिल जाणगे माफ करना असीं गुरु कोलों ही कुछ मंगदे जिहड़ियां चीजां बाजारों मिल जांदियां ने गुरु कोलों सानू जो मिलदा है उह है ज्ञान ज्ञान बाजारों नहीं मिल सकदा गुरु सानू ज्ञान दिंदा कि बंदिया तू अपने अंदर झात मार तेरे अंदर मत विच रतन जवाहर माणक तेरे अंदर हीरे ने रतन ने जवाहर ने माणक ने अंदर झात मार अपने बंदे खोज दिल हर रोज गुरु ने जो सानू बाणी दिती ओ कहिंदी कि अपने आप नू रोज परचोल करिया करो अपनी तुसी रोज खोज करिया करो अंदर झात मारिया करो अपने अंदर देखिया करो जदों सही अपने अंदर देखना शुरू कर दिता सानू पता लगेगा कि साडा ते हिरदा रतन नाल भरिया होया है साडे ते अंदर खजाने भरे पए ने इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे इस गुरु कोल जदों आउने आ वाहिगुरु सानू की दिंदा है कि कृपा करे नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुरु पाया ए जियो बहुते जन्म भरमे आ तां सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु उपदेश दिंदा है शब्द दिंदा है ज्ञान दिंदा है ते जदों ज्ञान हो जाए ना मनुख नू जिवें राजा सुत्ता सी सुपने च भिखारी सी पर जदों जाग गया फिर वो कहिंदा मैं ते राजा एवें सुपने च भिखारी बनिया बैठा सी जदों असीं जाग जाने फिर सानू पता लगदा है कि असीं ते परमात्मा दे बच्चे हाँ सानू ते कमी कोई नहीं है इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे ने कि गुरु की सेवा करांगे ते आपां जो चाहवांगे मिल जाएगा पर गुरु की सेवा वह करदा जिहदे ते परमात्मा की मेहर हो जाती है बख्शिश हो जाती है।
1: महला तीजा
0: तीसरे सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज फिर बख्शिश कर रहे हैं।
1: होर विडानी चकरी त्रिग जीवन त्रिग वास
0: विडानी दर्थ हुंदा बिगानी गुरु नू छड के जड़ी होर पासे नहीं जाके लोग तुरे फिरदे बहुत सारे लोग ने कई बड़ा कहणगे जी मैं ते बड़े पाठ कराए मेरी गल नहीं सुनी कि हुण मैं राधा स्वामी बन गया कि कहणगे जी हुण ते जी मैं फलाने बाबे को जान लग पिया फलाने पंडित को जान लग पिया जाओ जी सदके जिधर मर्जी जाओ तुहाडी जिंदगी है तुहानू कोई रोकदा नहीं है पर एक गल चेते रखियो जे को गुर ते बेमुख होवे मेरे सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थे कोई पुछो बबेकियां जाए मुक्ति दा अर्थ की है मुक्ति दा अर्थ है चिंता तो मुक्ति दुखां तो मुक्ति विकारां तो मुक्ति बुराइयां तो मुक्ति जमन मरण तो मुक्ति गुरु नू छड़ के होर किते ए तुहानू छुटकारा नहीं मिलना इन्हां चीजां तो इत्थे गुरु है जिहड़ा सानू बुराइयां तो रोकदा है अवगुणा तो रोकदा इत्थे गुरु है जैसा सतगुरु सुणीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़े आ मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ ते गुरु साहब जी कहिंदे ने भाई जिहड़ा गुरु नू छड के होर दूसरे बगाने बन्ने असीं लगदे आ ना त्रिग जीवन त्रिग वास साडा ते जीवन फिर त्रिकार योग हो गया ना देखो गुरु सानू जोड़दा परमात्मा दे प्यार च मैं बेनती करा गुरु ने किते नहीं कहा मैनू मत्थे टेको इह ते गुरु दा अदब करना सत्कार करना साडा फर्ज है गुरु ने किते नहीं कहा तुसीं मेरे को पैसे लैके आओ इत गुरु दियां दातां चों संगतां दी सेवा लई वंड के छकना साडा

सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे दरअसल मनुख ने पूर्व पूर्व अर्थ के अज तो पहला जो कुछ असी कीता है ये साडे पूर्वले कर्म ने। अज तो पहला वो जेड़े असी पूर्वले कर्म किते ना उन्हां दा फल ते सानू मिलना है, इनू को मेट नहीं सकदा भाई। ते साहिब जी कहिंदे ने जिन्हां ने औगण किते वह ते फिर दुखी हुंदे ने, पर गुरमुख नाम निवास जिन्हां ने गुरु की शरण लै लई उन्हां दा नाम दे विच निवास हो जांदा है, नाम नाल जुड़ जांदे हन।

उस गुरु दे चरणा च डिग पवो जिहड़ा तुहाडे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा दूर कर दे, जिहड़ा तुहानू मोह माया तो उच्चे उठा देवे, ते जिहड़ा ए कहे वी इन्ने दिन आ तेरियां ते आ कारोबार बड़े वड्डे चल जाणगे, इत्थे ते मोह होर वड्डा आ गया, फिर होर साडी लालसा वधे कि इह नहीं गुरु इह नहीं कहिंदा कि कारोबार ना चलण, पर गुरु कहे कि परमात्मा दे प्यार जुड़ो सब कुछ मिल जाएगा तुहानू। परमात्मा दे प्यार जुड़िया कदी किसी नू कमी रहिंदी है? जाका मीत साजन है समिया ते जन को का की कमिया। जेड़ा रब दे प्यार जुड़ गया उदे मगर ते ए दर्ज दियां सिडियां दौड़ियां भजियां फिरदियां ने, चार पदार्थ उदे मगे हाथ जोड़ के खड़े ने। इस कहिंदे जिन्हें साडे अंदरों अज्ञानता मेड़ती उस गुरु दे चरणा च डिग पाओ।

गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नाल जुड़ो, अजिहा रहिबर तुहानू दुनिया च नहीं मिलना। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनिया, भुल चुक दी खिमा करनी। आखिरी पंक्तियां भाई साहिब जी सुना रहे ने, उहदे नाल ही समाप्ति होवेगी जी।

तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगव

सुनंदे सर्वतला हे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा पला। दोहरा आ गया पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्या जो प्रभु को मिल भोज है।

अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै पंगर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर

मातपिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊचे ते सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाही गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय द्वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रेतम भगवत सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रम दास ही सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाय।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम

काल मुहूर्त आजूनी शैव अंगुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैव अंगुर प्रसाद वाहे गुरु।

पराभ्रिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पराभ्रिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सबदे आवेहे तुदजी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का धातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरेक को पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हरते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पए जैना हर ते आया जी तिन तूटी जमकी फांसी जिन हर निरपो ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे वेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करें हर पूजा जी तपतापही जपही बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वर्त है जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उबाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझमें दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल वियोग मिल बिछड़िया संयोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सदही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता।
तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोई, तू कर कर विख है जान ही सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरब हड़े, भई रे निवासा पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो महो पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक ना चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणमत नानक तिनकी शरणा, जेन तू ना ही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, स्रंग जाम लाग पवजुल तरन कै, जन्म वृथा जा रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्ने हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाव पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबाए तुम काब हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख स्वय कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबहरन को आय संग्रिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभा दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्त जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेवगण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो,
कड़कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी ते कुंचर असथुल्ला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुही, सुख पाए साधन के सुही। एक एक की पीर बछन्ने, कट कट के पट पट की जन्ने। जाओ उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख कर तो कबहू, तुम मैं मिलत देह धर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आव अपनी बूझ उचारे। तुम सब हीते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड़े उचारत पीदा, जाको पीव ना पावत बिदा। ताको कृपाण अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह भिव। आप अपनी बुदह जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। इक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंड जेर से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आजोगा स्रूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार आसिख संघरो। दुष्ट जिते उठबत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस्तु जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिंत मैं सवारा, काल फांसती ताहे उबारा।

खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दले हो बारी, सर ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे दबते तुम्हारे तबते, को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक नाम मान्य, सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपेद कहे, हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुम्री कर, मैं ना कहो सब तो हे बखान्या, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार, बहि गहे की लाज अस गोविंदास तोहार, सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार, बहि गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा अनंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनंत भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मनवजियां वाधाइया राग रतन प्रवार परियां, शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हरि केरा, मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो, तू मन मेरे दुख सब मिसारण, अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्ला सम्रत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सच्चे साहेबा क्या नाही हर तेरा, हरता तेरा सब किच है, जिस दे है सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द खनेरे, कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैना भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए बसिया, जैना इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया एहे बढ़ियाईया, कह नानक सुनो संतो, शब धरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पं शब्द तिद खैर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर थारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद, जिन को से नाम हर के लागे, कह नानक तस कहोआ, तित घर अनहद बाजे, आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे,
दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते बोनी कहते पवित्र सतगुर रहा भरे हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा परे हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे दारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रखो और धारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे आ तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

आवो सज्जना हों देखा दर्शन तेरा राम कर अपने खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम आओ जी तू आओ हमारे हरज श्रवण सुनावना तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना आए पव शरनागति कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल साजना संत आओ मेरे आनंदा गुण गाए मंगल कसमला नित जाहे परेरे सुख हो टल गुर सेवी है आहिने सह सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसम दी नूर आसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूर हर रस चोग चुगहे प्रभ पावे सरवर में हंस प्राण पत पावे गुर सागर रतनी पर हुरे अमृत संत चुगहे नहीं दूरे हर रस चोग चुगहे प्रभ पावे सरवर में हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए राहाओ रख रख चरण तरे विचारी दुविधा छोड़ पाए निरंकारी

सुन मंडल इक जोगी बैसे नर न पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिबलाई

गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै कटन हरे, हम में मार मिले पग थारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप नचीनस ब्रह्म ब्रह्म रोवे।

जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए सच्चे निर्मल मैल न लगे

नानक जाचै साच स्वरूप सच्चे निर्मल मैल न लगे गुर कै शब्द परम भौ भगे सूरत मूरत आधे अनूप नानक जाचै साच स्वरूप वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक वालिये कुल आलम धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेड़े दे दीवाना अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारे हो सतगुरु जी ने बड़ा तरस कीता है अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वड़े जथे गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच सरवण करदे हां। बाणी दा रस बाणी दा आनंद माण रहे सां जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो। ओह चल रहे लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां दे नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इथों तक इतिहास सरवण कीता सी कि सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने कलमोटा नगर जेड़ा है जिथों दे लोगां ने गुजरां ते रंगड़ां ने गुरु साहिब दी संगत और गुरु क्या सिखां दे नाल दुर्व्यहार कीता सतगुरु जी ने उस नगर ते कूच करके ते उह नगर नूं जित्तिया। जदों सतगुरु पातशाह जी ने उह नगर जित लिया ना उथों दे जन्ने भी अपने आप नूं योधे कहाउण वाले सूरमे कहाउण वाले सारे उत्थे गुरु साहिब ने सोधे। उस नगर नूं जित्तण तों मगरों मुड़ के धन गुरु कलगीधर साहिब नाल किसे ने उत्थे खोट नहीं कमाई। फिर ते गुरु पातशाह जी नाल विचार सिखां ने जदों सतगुरु जी ने विचार सिखां नाल कीती भी हुण आपां बिभौर साहिब ना बिभौर दी धरती ते वापस क्यों जाणा हुण आपां आनंदपुर साहिब नूं चलदे हां। गुरु पातशाह जी नाल सिखां ने विचार करदिआं भी गुरु जी दे बोलां ते ही जिक्र कीता भी सतगुरु फिर आपां आनंदपुर साहिब ही चाले पाउंदे हां। इथों तक इतिहास सब संगतां ने कल दे दीवाना अंदर सरवण कीता सी। आओ किवें तां गुरु कलगीधर साहिब हुण उथों आनंदपुर साहिब पहुंचदे ने और किहड़े किहड़े कौतक ने जो गुरु कलगीधर साहिब आप वरताउंदे ने और सिख संगतां दे उत्ते सतगुरु जी किवें प्रसन्नता धारण करदे ने। आओ इतिहास दे अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन इतिहास गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सकल खालसे ते सुन बाणी जानी मन की चाहे महानी।
0: भाई साहिब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामनी रचेता श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ उन्हां इतिहास की लड़ी नूं अगां तोरिया और इतिहास नूं ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।
1: ਦੇਣ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਰਾ, ਮਾਣੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬੇਰਾ।
0: ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ

0: खुजले के ती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारग तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत।

दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास वी सुहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डठ

मांगे मुख कर संतन की तोरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तुदे आगे अरदास।

जगत उधारन नव निदान भगत पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारन सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद।

संतोख सराय चो सदा शील सना हो सो है गुरु शब्द समाचरो नाम टेक संगाद बो है अजूनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास गुर जिन

सत गुर खे मां ताणिया जुग जूत समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे।

उन्मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अबरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देह

सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो तारन तरन खिन मातर तारन तरन खिन मातर जाको दृष्ट धारे शब्द रिद्ध बिचारे काम क्रोध खोवे जियो जीवन सबन दाता अगम ज्ञान विखे आता एनस ध्यान तावे पलक नाश होवे जियो जाको देखत दृदर जावे नाम सुन दान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन

अकत कतनहार तुझे बुझाई है। परम भूले संसार छूटो जूनी संगार, जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है। मन प्राणी मुगद विचार एनस जप धर्म करम पूरा सतगुरु पाई है।

गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर